0: तो क्या प्रोसीजर है जी? 117 और थायराइड पूरी जैसे निकाल लेवे 150 निकाल लेवे
1: 15
2: Right.